0: पक्षीगढ़ा भर्ना होने संबंधी सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस को सूचना।
1: विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन व्यवस्थापन करते आईरिक साथ ही यूपी दक्षिण एवं अनुपति शिक्षक द्वारा अध्यापन भईरिक सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस में एसई शैक्षिक सत्र 2083 कक्षा 11 में भर्ना भईरिक सभी एसई सूचना मार्फत जानकारी कराई।
0: भर्ना कार्यक्रम में होने नीति
1: भर्ना म्याद यही देश 17 गति देखि असार 15 गति सम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फार्म भरने म्याद 2083 साल असोज 20 गति सम्म पढ़ाई होने समूह कम्प्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानवीय समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 30 जना र कम्प्यूटर साइंस समूह में 40 जना मात्र भर्ना लिने थप जानकारी को लगी संपर्क नंबर 98-65-10-55 98-41-63-53-37 98-42-84-87 में संपर्क करना सकूस।
0: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस तल्लेरी सोलखुम्बू।

하게 되는 말을 밝히는 것을 시바신 자는 말고 नौ बजे को राष्ट्रीय और चार महीने भित्र का खबर सकने अगि मुख्य मुख्य खबर फेरी पटक आउँदो आर्थिक वर्ष को बजेट लेखन अंतिम चरण में सरकार को सुशासन को मार्गचित्र चुनावी वाचापत्र लगायत का विषय केन्द्र में काठमाडौं में अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव आज देखि जेठ 22 देखि 25 सम्म वृहत प्रदर्शनी फिल्म इलेक्ट्रोटेक काठमाडौं महानगर ने आह्वान गरेको छात्रवृत्ति परीक्षा का सबैभन्दा धेरै आवेदन विज्ञान विषय में 9 बजे को नेपाल खबर सकियो।

0: বিশেষ অভিযান জিও রেডিও নেটওয়ার্ক আহিলে বিহানকু দশ বাজে
1: यो समय किसान पाइन प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
0: राष्ट्रको शान किसान
1: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युसन्स।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्ध नियंत्रित
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्रो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: हुंडा र खोटाङको डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनु का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत
2: हुंडा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस ट्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजान उपलब्ध
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98 42 80 300

0: नेपाली स्त्रीवाद हित बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय गुंडा दान को मोटर सकल तथा स्कूटर अब उत्तृंडा को मूलन चेतना
1: विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफरोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: उखल ढुंगा खोटांग डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाने का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद करना एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: ऑनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: उखल ढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस।

0: सिद्धिचरण नगरपालिका एघारह गोरीमारी भिजाई पोखलढुंगा।
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852880222 र 9842808300।
2: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चित्र।
1: हुंडा का विशेषता
0: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
0: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
0: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भैर
0: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी। उखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
0: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
0: उखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होम मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका एघारह गोरीमारी डिजाइन
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852880222 र 9842880300।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुपुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: पर विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चित्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइनबाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002222 र 9842803000।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988022 र 9842880300

का वो संस्कृति की वो मान्यता सबने दूसरी सके आज का आत्मता यति कार्पेट नै हो। विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सनुहोला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्केल बजार फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सब मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग करे भुक्तानी करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 037590222 9852888022 98482030।

संस्कृति जीवन मान्यता सबले बिर्सिस आजकल आत्मीयता यही कार्पेट नहीं हो विगत तीन दशक देखि को सुमधुर साथ यदि कार्पेट किंदा कार्पेट को पछाड़ी यदि को लोग हेन नबिर्स होगा यदि कार्पेट कार्पेट को शहनशाह।

0: सोलू एफ एम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफ एम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: সেই ভাকুরা প্রশ্ন বিচার জানো রেডিও নেটওয়ার্ক অহিলে বেলুকীকো ছ বজ্যো
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
0: राष्ट्र को शान किसान
1: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्पिन नगरपालिका ५ सोलु कुम्बु

0: 才华就你所路 FM 不凡
1: सोलु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: संचय सोलु FM स्टूडियो टाइम
3: इस 9 PM रात को 9 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
4: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएममा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू